0: और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही है। महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The

0: இல்லம் நாடி வந்து இதுவரை இறை இதுங்களை இசைத்து சென்றது தேனிசை. பண்பலையில் இனி தொடர்வது சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாக ஸ்ரூயந்தாம். பிரவாச்சிகா ரிச்சா ஜா. अथ वार्ताः. संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्. राज्यसभया एतत् विधेयकं ह्यः पारितम्. लोकसभया तु बुधवासरे एव तत् अनुमोदितमासीत्. अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति. एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः दशवर्षीयः कारावासः, दशकोटिरूप्यकापर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति. प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितीकर्तुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता. तथैव आरक्षिस्थानके सूचनापञ्जीकरणदिनाङ्काद् द्विमासाभ्यन्तरे अपराधानाम् अन्वेषणं भवेत्. अभियोगपत्र

0: नमस्कार, सुप्रभात। हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। जी हाँ, बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, हर नई सुबह हमें फिर से कोशिश करने, कुछ नया सीखने और मुस्कुराने का मौका देती है। तो क्यों ना आज की शुरुआत इस भरोसे के साथ करें कि छोटी सी कोशिश भी हमारे दिन को बेहतर बना सकती है। इसी सकारात्मक सोच के साथ समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। गुड मॉर्निंग एंड हेलो प्रमोद।
1: गुड मॉर्निंग वैष्णवी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेरिन वी गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 31st ऑफ जुलाई 2026।
0: और अब नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। जी, संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने

0: विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: नोट ऑफ इट।
0: चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
5: In a major step towards digital governance and citizen-friendly services, Goa has introduced the Anywhere Registration System for property documents under the National Generic Document Registration System. Chief Minister Dr. Pramod Sawant says the initiative will simplify registrations and will soon be extended to other government departments. Our correspondent has filed this report.
6: Goa has taken another step towards modernizing public services with the launch of the Anywhere Registration System for property-related documents. Introduced under the National Generic Document Registration System or NGDRS, the new facility allows citizens to register sale deeds at any sub-registrar office within the same district, removing the need to visit a specific office. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said Goa is the third state in the country to implement the NGDRS platform. The initiative is aimed at reducing delays, simplifying document registration and making government services more accessible to citizens. Encouraged by the response to the new system, the state government now plans to introduce anywhere registration model in the transport department and deputy collector offices. The move is expected to particularly benefit senior citizens, non-resident Indians and property owners living outside Goa by reducing location-based administrative hurdles. Chief Minister Sawant said initial issues are being resolved to ensure the system delivers faster, transparent and citizen-friendly services. For Aaj Savere, Mahesh Sobre, Akashwani News, Panji.
5: The nation pays homage to revolutionary freedom fighter Shahid Udham Singh on his 87th martyrdom day today. Belonging to the Ghadar Party in Hindustan Socialist Republic Association, Udham Singh was assassinated by Michael O'Dwyer, former Lieutenant Governor of British Punjab, on the 13th of March 1940 to take revenge of the 1919 Jallianwala Bagh massacre in Amritsar. More from our correspondent.
7: The disturbing memory of the Jallianwala Bagh massacre kept him haunting till the time he shot Michael O'Dwyer dead in London's Caxton Hall. While in custody, he used the name Ram Mohammad Singh Azad, representing the three major religions in India and his anti-colonial sentiment. He was convicted of murder and hanged on this day in 1940. To commemorate the martyrdom day of the legendary revolutionary Udham Singh, a state-level function will be organized at his birthplace in Punjab's Sunam. Haryana government is also paying tributes to him at a program in Sanaur district today. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.

0: और प्रमोद अब श्रोताओं को देते हैं कुछ खेल जगत की खबरें। शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की। तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम वर्ग में एक रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कालीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे।
1: That's right. Senior Indian batter Ajinkya Rahane has announced his retirement from international cricket with immediate effect. In a social media post, Rahane said the time is right for him to move on from international cricket and all formats. Rahane last played for India in 2023 when he was called up to the test team for the tour of the West Indies. His last appearance for the country in the one-day international format came in 2018 when he played against England. The 38-year-old played an overall 85 tests, 90 one-day internationals and 20 T20 internationals for India in a career which began in 2013.
2: The reality of life is that everything has a beginning and everything has an end. When the time comes, you simply have to respect it and move forward. I have always relied on timing in my batting and I have always understood its importance. I feel the timing is right for me to move on and announce my retirement from international cricket and all formats. From those early days traveling from Dombivli as a young boy just to practice, I gave this game everything I had. Every single day, every innings, every opportunity I got to bat, the dream was always to wear the India cap.
0: प्रमोद चलिए अब निकलते हैं देश के प्रमुख शहरों की सैर पर, जहां आज दिन भर कई अहम गतिविधियां होने वाली हैं। सबसे पहले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली सरकार आज से विद्या वाहिनी साइकिल वितरण अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिलें वितरित करेंगी। पहले चरण में 3000 छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, जबकि अगले एक महीने में कुल 140,000 छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ मिलेगा। और दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण आज से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हो रहा है और 30 अगस्त तक चलेगा। पहले मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 आमने सामने होगी। डीडीसीए के इस टी20 टूर्नामेंट में 8 पुरुष और 4 महिला टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो श्रोताओं, अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं तो परिवार और दोस्तों के साथ स्टेडियम पहुंचिए और मैच का आनंद लीजिए।
1: दैट्स राइट। मूविंग ऑन फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, the Tamil Nadu government exchanged an MOU with the University of Western Australia to establish its India campus in Chennai, which is the first such international campus to be set up in Tamil Nadu under the UGC's Foreign Higher Educational Institutions 2023. The 70,000 square feet campus will be set up in Velachery and will bring its globally recognized education across STEM, business and management. Professor Amit Chakma, Vice Chancellor of the University of Western Australia, will offer 8 undergraduate and postgraduate programs with an inaugural intake target of 300 students. The campus will be built in about 125 crore rupees. Still with Chennai news, a special CBI court in Chennai has arrested sentenced gangster Chota Rajan to 7 years imprisonment and imposed a fine of 55,000 rupees on him for fraudulently obtaining an Indian passport using forged documents and a false identity. The court convicted Rajan under the charges of cheating, forgery, cheating by personation and knowingly submitting forged documents to obtain a passport.
0: और चेन्नई से अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके बनने से नागपुर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी तथा कारोबारी आयोजनों का प्रमुख केंद्र बन सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2029 तक पूरे होने वाले इस सेंटर का निर्माण आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष तकनीक के साथ किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार कोयना बैकवाटर महोत्सव को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी कर रही है। महोत्सव में कार्निवल, फ्लोटिंग मार्केट, हेलीकॉप्टर राइड, वाटर स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। राज्य के पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि ये महोत्सव प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और स्थानीय संस्कृति का अनूठा संगम बनकर महाराष्ट्र के पर्यटन को नई पहचान देगा।
1: Moving on to Bangalore, the Greater Bengaluru Development Minister Krishna Bhairi Gowda has said the month-long Freedom from Waste campaign will be launched across Bengaluru on the 1st of August to clear legacy waste from public places. He said around 22,000 tons of legacy waste has been

0: identified at 1,616 locations, with over 100 vehicles being deployed for the drive. The Chief Minister will inaugurate the campaign. Karnataka Energy Minister K.J. George has said that the state installed over 27,700 solar agricultural pump sets under the PM Kusum B scheme, reducing grid power demand by nearly 144 megawatts. The minister said more than 1 lakh farmers have applied for solar pump sets, reflecting growing acceptance of solar-powered irrigation. The state provides 50% financial assistance for installations. I think this is a very good news, Vaishnavi. Even mere ghar mein bhi solar ka panel laga hua hai. And I think it's a good initiative because dhoop to aati hai.
1: Bilkul.
0: I think we should get that energy into our homes.
1: Ji.
0: Yeah. The state provides 50% financial assistance, and the initiative is expected to avoid the purchase of 240 million units of electricity annually, resulting power purchase savings of about 146 crore rupees for ESCOMs and reducing the state's agricultural electricity subsidy burden by over 200 crore rupees every year. Even in my home, my neighbors get a bill of about 14,000 and I get a zero bill.
1: बिल्कुल. और आजकल सरकार भी काफी इसको प्रमोट कर रही है.
0: Exactly.
1: तो बिल्कुल इसका लाभ उठाना ही चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: और अब चलते हैं कोलकाता की ओर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे. इसकी तैयारियों के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अधिकारियों के साथ बैठक की. राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से इस राष्ट्रव्यापी अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया.
0: Moving on to Hyderabad, Telangana Governor Shiv Pratap Shukla praised Indian classical dance as a sublime confluence of spirituality and cultural heritage during the presentation of the Sapta Tandavam at Ravindra Bharati in Hyderabad yesterday. Accompanied by his spouse Janaki Shukla, the governor witnessed the Kuchipudi dance production conceived and choreographed by Padma Shri Dr. G. Padmaja Reddy. The performance depicted the 7 cosmic manifestations of Lord Shiva, blending intricate choreography, expressive abhinaya, and rhythmic precision. Addressing the gathering, the governor highlighted how Lord Nataraja's dance reflects the universal cycle of creation, preservation, and dissolution, serving as a vital link to India's civilizational identity.
1: Or थोड़ा मौसम का हाल जान लेते हैं. सावन के रिमझिम और बदलते मौसम के बीच बाहर निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेना बेहद जरूरी है. दिल्ली में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश होने की भी संभावना है. राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं मुंबई में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना है. भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं कोलकाता में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
0: Moving on to the south, Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is also expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, 31 जुलाई का दिन दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है. आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जानते हैं आज के दिन घटित कुछ खास घटनाओं के बारे में.
0: That's right.
1: शुरुआत करते हैं 1998 से. 1998 में आज ही के दिन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 10वां सार्क शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ. इस सम्मेलन में दक्षिण एशियाई देशों के बीच शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
0: टुडे इज वर्ल्ड रेंजर डे. इट्स बीन ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड टू कमेमोरेट रेंजर्स किल्ड और इंजर्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी एंड टू सेलिब्रेट द वर्क रेंजर्स डू to protect the planet's natural treasures and cultural heritage. Recognized by International Ranger Federation, IRF, the day proudly recognizes rangers as frontline defenders of planetary health. The theme for this year is Rangers, Guardians of a Changing Planet, which marks the 20th anniversary of World

0: Rangers Day to honor frontline conservation workers.
1: जी.
0: Today is also avocado day. आप avocado खाते हो?
1: जी खाते हैं.
0: It's a very good fruit.
1: जी पर उतना कुछ खास पसंद नहीं मुझे.
0: अच्छा ठीक है. We are honoring the beloved nutrient-packed green superfood avocado. The day was founded in 2017 by a sustainable meal delivery service in the US to mark the peak of the California avocado harvesting season. However, the day quickly grew into a massive social media phenomenon driven by food enthusiasts sharing recipes like avocado toast and fresh guacamole. I think aapko avocado khana chahiye Vaishnavi.
1: Ji khati hu bilkul.
0: Kadhi bhi cheez achhi hoti health ke liye.
1: Ji bilkul.
0: Jaise karela bhi acha nahi waise utna taste acha nahi hota but it's very good for health.
1: Ji bilkul sahi.
0: Avocado aap kha ke dekhiye. 1667, the Treaty of Breda ended the Second Anglo-Dutch War and transferred New Netherlands, New York, into New Jersey and to London. In 1786, Scottish poet Robert Burns' first volume of poems, chiefly in the Scottish dialect, was published and was an immediate success. In 1950, India and Nepal signed the Treaty of Peace and Friendship. And in 1971, Apollo 15 astronauts James B. Irwin and David Scott first used the four-wheeled, battery-powered lunar roving vehicle to extensively explore the moon's surface, in particular, the Hadley Apennine site.
1: और 2004 की बात करें तो 31 जुलाई को बैंकॉक में आयोजित पहले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्रीय संगठन का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी BIMSTEC किया गया। इसी दौर में नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य बने। आज बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। वहीं थोड़ा आगे बढ़े 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर सुधीर पारिक को अमेरिका में उनके चिकित्सा सामुदायिक सेवा और परोपकारी कार्यों के लिए पॉल हैरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
0: In 2012 at the Summer Games in London, American swimmer Michael Phelps captured an unprecedented 19th career Olympic medal when he helped the US team win the 4x200 meters freestyle relay and he surpassed the record set by Soviet gymnast Larisa Latynina.
1: और श्रोताओं इतिहास के पन्नों से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं उन विशिष्ट हस्तियों की ओर जिनका जन्म या पुण्यतिथि आज के दिन से जुड़ी है और जिनके विचार व्यक्तित्व तथा योगदान आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस वीर सपूत की जिनके भीतर जलियांवाला बाग की दर्दनाक घटना ने आजादी की एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझी नहीं। वही युवा आगे चलकर सरदार उधम सिंह के नाम से इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने 1940 में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर की हत्या पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। उनका ये साहसिक कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक निर्णायक और अमर अध्याय के रूप में दर्ज है।
0: That's right. He was born as Sher Singh on the 26th of December 1899. And as you rightly said, he was known for assassinating Michael O'Dwyer, the former lieutenant governor of the Punjab in British India on the 13th of March 1940. And for that, I think he was subsequently hanged in July 1940.
1: Yeah. और आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी केवल बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है इसे मजबूत बनाने में ऐसे अनेक लोगों का भी योगदान रहा जिन्होंने देश की आजादी के साथ साथ समाज की सेवा को भी अपना जीवन समर्पित किया आशुतोष दास ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे जिनकी आज पुण्यतिथि है आशुतोष दास ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेकर जन जागरण और देशभक्ति की भावना को मजबूत किया था
0: वैष्णवी टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मोहम्मद रफी
1: जी बिल्कुल पर उससे पहले हम श्रोताओं को उनका ये गीत सुनाते हैं पहले
0: जी, बिल्कुल
1: फिर आगे और चर्चा करेंगे
0: जी
2: लिखे जो

आवाज सुनी तो शायद पहचान भी ली होगी, लेकिन सोचिए एक ऐसी आवाज जो कभी प्रेम की मिठास बनकर गूंजी, कभी विरह की कसक बनी, कभी भक्ति में डूबी और कभी देशभक्ति का जज्बा बनकर दिलों में उतर गई। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी की, हिंदी सिनेमा के उन महान आवाजों में से एक जिनके गीतों ने कई पीढ़ियों को यादों के सुर दिए। रफी साहब की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उनकी आवाज की बहुरंगी दुनिया, एक और चौधरी का चांद हो जैसी मोहब्बत की नजाकत, तो दूसरी ओर मन तड़पत हरिदर्शन को आज जैसी भक्ति, और कर चले हम फिदा।

0: जैसा देश प्रेम हर गीत में, उनका अंदाज अलग लेकिन उतना ही असरदार।
1: That's right, Vaishnavi. He was notable for his versatility and range of voice. जी. His songs varied from fast, peppy numbers to patriotic songs. And I think जो भी उन्होंने गाना गाया है, बिल्कुल मन से गाया है. Even जैसे आपने बोला बैजू बावरा का गाना.
0: बिल्कुल.
1: And to think
0: अगर
1: of it.
0: अगर वैसे आपने बताया बैजू बावरा का, तो मुझे याद है उसी फिल्म का एक गीत है, वो दुनिया के रखवाले, जिस समय गाते समय, जैसे हमने सुना है कि गाते समय जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, तालियों की गूंज हुई, लेकिन उसी समय उनके गले से मतलब खून सा निकल आने लगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाई पिच पे, उनका इतना तेज ऊपर सुर ले जाना पड़ा था.
1: Exactly.
0: तो सोचिए कितना मतलब क्या मेहनत लगती होगी उस समय.
1: नौशाद साहब ने कहा था कि मैं एक ऐसा गाना दूंगा जो तुम्हारे लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा, मतलब उसके आगे कोई नहीं गा सकता उस पिच पे. एंड ही टुक द चैलेंज एंड ही संग दैट सॉन्ग ब्यूटिफुली. And another very interesting thing about Rafi is, मैंने जो भी interviews देखे, is a very humble man.
0: बिल्कुल.
1: And उन्होंने यही बोला था अपने बेटों को भी कि अगर नीचे देख के चलोगे तो कभी गिरोगे नहीं. So he never had that ego कि मैं बहुत अच्छा singer हूँ. He was always very down to earth, very very good man. Unfortunately, he died very early at the age of 55. And एक interesting trivia है मेरे पास, that mostly we always think of Rafi as a singer only, but he acted in one film.
0: अच्छा.
1: Yes, जुगनू 1947 में, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार.
0: अच्छा.
1: And we have a song from that film, जिसमें which is picturized on मोहम्मद रफी. वो सुन लेते हैं.
0: जी बिल्कुल.

0: रफी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। रेडियो पर उनका कोई गीत बजता है तो लगता है जैसे बीता हुआ कोई इस खूबसूरत दौर फिर लौट आया है। तो आइए मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर सुनते हैं उनकी आवाज में कुछ सदाबहार गीत।
1: तेरी

0: हामिद के पास केवल 3 पैसे थे और उन पैसों से उसने खिलौने नहीं खरीदे बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा ले आया। बचपन में सुनी ये कहानी शायद आज भी आपको याद हो। एक छोटा सा हामिद ईद का मेला और अपनी दादी अमीना के लिए खरीदा गया वह चिमटा। कहानी खत्म हो जाती है लेकिन हामिद की मासूमियत और उसके छोटे से त्याग की तस्वीर मन में बहुत देर तक बनी रहती है। यही खासियत थी मुंशी प्रेमचंद की लेखनी की। उनकी कहानियों में किरदार हमारे आसपास के साधारण लोग होते थे लेकिन उनकी भावना इतनी सच्ची होती थी कि वे पाठक के अपने लगने लगते थे। 31 जुलाई 1880 को जन्मे मुंशी प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, हिंदी और उर्दू के महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन जैसे उपन्यास और ईदगाह, पूस की रात, कफन जैसी कहानियां उन्होंने साहित्य को दी। बचपन में पाठ्य पुस्तकों के जरिए उनसे परिचय हुआ हो या बड़े होकर उनकी कहानियों को फिर से पढ़ा हो, प्रेमचंद की रचनाएं हर उम्र में कुछ नया कहती है।
1: Today is the birthday of Mumtaz Askari. She was born to Abdul Samad Askari, a dry fruits vendor, and Shadi Habab Aga, who hailed from Mashhad, Iran. Her father hailed from a family of imams. Her parents were divorced just after a year she was born, and because of financial trouble, she had to get into acting.

0: प्रमोद, जैसे कि आपने उनके बारे में बताया, लेकिन मुझे जो उनकी एक इमेज याद है वो चुलबुली अदाएं, शानदार नृत्य और दमदार अभिनय, दर्शकों को दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री थी वो। तो मुमताज के अभिनय के साथ साथ उनकी फिल्मों के गीत भी उतने ही लोकप्रिय रहे। तो आइए अब सुनते हैं मुमताज की कुछ लोकप्रिय फिल्मों के गीतों की चुनिंदा झलकियां।
1: वंडरफुल।

0: तो श्रोताओं, आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन खुशियों और सफलता से भरा रहे, अब मुझे और मेरे सहयोगी प्रमोद को दीजिए अनुमति।
1: That's right. Have a superb day. नमस्कार।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की।

0: गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान, मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए

0: समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
1: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदेव जलडमरो मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
2: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
3: The reality of life is that everything has a beginning.
4: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में

0: हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं, असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्ता लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर पेपर लीक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम्स पैसेज ऑफ द बिल, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announced maritime defense alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovpreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kalirammana bags bronze medal in discus throw. And now the news in detail. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders to ensure

एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: நினைவூட்டுகிறோம் நேர்களே, இன்று பிற்பகல் 1:10 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசையில் பி லலிதா மாதவ் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். வி எல் குமார் அவர்கள் வயலின், திருவிடை மருதூர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं की हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
2: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
1: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। आज सदन की कार्रवाई 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध

0: तो प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा है कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री जैन ने कहा कि आकाशवाणी ने एक विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारक के रूप में पहचान बनाई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा उधम सिंह को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: आज शिलोंग में 135वें डूरंड कप के ग्रुप ई के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस ग्रुप में मेघालय के तीन क्लब शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब और लैंगसनिंग फुटबॉल क्लब खेल रहे हैं। इनके साथ ही मुंबई फुटबॉल क्लब भी ग्रुप ई का हिस्सा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा आज दोपहर होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी आज शिलोंग के पोलो ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेंगी। अनुमिता दास, आकाशवाणी न्यूज, शिलांग।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
3: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
2: Initiating the discussion, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge said that proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations. Prime Minister Narendra Modi has said that government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government has faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk."
4: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
2: The nation pays

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए सहमति बनने की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए, 10 अंदर फंसे हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
1: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: ये नई सरकार फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के निकट समन्वय में काम करेगी। उन्होंने कहा कि समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी।

0: क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसराइल किसी भी शांति समझौते के लिए गजा पट्टी से हथियार और सेना हटाने सहित हमास की पूरी तरह निरस्त्रीकरण की मांग करता रहा है। इसराइली सेना गजा में अपनी सैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ाती रही है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी के 70% इलाके पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए हैं और 10 अब भी अंदर फंसे हुए हैं। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण बताया जा रहा है। कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक हादसे होते रहते हैं। स्पेन के क्षेत्रीय नेता हुआन जेसुस विवास ने कहा है कि पिछले सप्ताह सैकड़ों प्रवासी मोरक्को से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव के स्वेटा में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों पर काफी असर पड़ा है। श्री विवास ने स्पेन सरकार से हस्तक्षेप करने तथा मानवीय और सुरक्षा आपातकाल की चेतावनी देने का आग्रह किया। स्पेन ने कहा है कि वे मोरक्को के साथ मिलकर अतिक्रमण रोकने और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने के लिए काम कर रहा है। यातना और क्रूर अमानवीय व्यवहार या सजा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिरासत में उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी पसंद के अनुसार चिकित्सा जांच और उपचार की अनुमति देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एडवर्ड्स ने बताया कि इमरान खान को 33 महीनों से एक छोटी और खिड़की रहित कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। वर्ष 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान को कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा है। इस बीच पार्टी की संसदीय समिति ने इमरान खान की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर 5 अगस्त से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुरामन ने भी फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कांस्य पदक विजेता एथलीट सीमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह सफल युवा महिलाओं को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। उधर अजरबैजान में बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल ने और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इस बीच वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का यही सही समय है।
3: The reality of life is that everything has a beginning.
4: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान विकास सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। समग्र

0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
1: शहीद उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मार दी थी। उन्हें माइकल ओ डायर की हत्या का दोषी ठहराते हुए वर्ष 1940 में आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी। पंजाब के संगरूर जिले में उनके पैतृक स्थान नाम में उनकी स्मृति में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। गृहमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन धैर्य, संकल्प और देशभक्ति का अप्रतिम उदाहरण बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन मनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए सहमति बनने की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए, 10 अंदर फंसे हुए हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: கேட்ட அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் இணைவோம் 11:10 திரைகானம் நிகழ்ச்சியில். தொடர்வது செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
2: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डेटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
1: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का

0: इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
2: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
1: Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk."
3: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that the passing of the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 by both houses is a step forward towards ensuring the integrity, transparency and credibility of the public examination system. In a social media post, Dr. S. Jayashankar stated that the bill provides for time-bound investigations, special public prosecutors, special fast-track courts and an expedited appellate mechanism. This will further strengthen the legal framework to prevent use of unfair means in public examinations. In Jammu and Kashmir, authorities have ordered complete suspension of traffic on Jammu-Srinagar National Highway NH44 today to facilitate slope stabilization and restoration works on the vulnerable Udhampur-Chinani stretch near Ladha, Samroli. An order on the road closure was issued by the Additional District Magistrate Udhampur following a request from the Project Director, National Highway.

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

பாமாக ரீசனி தப்பாக ரீசனி கமா கமத சரி கமகரி.

0: लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार

0: तत्काल स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
1: सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल x @

0: JR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल छनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरला, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसटीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை. நேரம் 2:30.
4: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்ட்.

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో ఢిల్లీ నుంచి వార్తలు ప్రసారమవుతాయి.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई. इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे. श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की.
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए. आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा

0: को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। सरकार ने कहा है कि विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक यात्राओं के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूह के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की। उन्होंने एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर के नवाचार समाज की जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर में चोट आई।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
1: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने आज सुबह दुर्घटना स्थल का दौरा किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मोपे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer Dilip Saikia took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nithyananda Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticised the opposition for not participating in the discussion. The minister said he had repeatedly appealed to the opposition, including the Congress, to ensure that such an important bill is properly discussed.
4: Parliament has been sent. The bill is to speak alone, not to create a ruckus. But you do not take part in the bill. Then you go out in the news and say that the government does not hold discussions, passes the bill without discussion. You cannot level this allegation. You have lost your chance. I just want to say this much, that the next bill that you bring, if you do so,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अनुमानित। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट munitionsindia.in munitionsindia.in। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया आमंत्रित करती है इन पदों के लिए आवेदन। विशेषज्ञ हाइड्रो संविदा, विशेषज्ञ ट्रांसमिशन संविदा तथा विशेषज्ञ विनियामक एवं वितरण संविदा। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप और विस्तृत जानकारी उपलब्ध है पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.powerfoundation.org.in। टाटा स्मारक केंद्र नवी मुंबई आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए चिकित्सा अधिकारी ई क्लिनिशियन साइंटिस्ट सेल्युलर थेरेपी चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा भौतिक विज्ञानी वैज्ञानिक अधिकारी डी वैज्ञानिक सहायक बी हिमेटोपैथोलॉजी वैज्ञानिक सहायक बी पैथोलॉजी वैज्ञानिक सहायक बी रेडियो डायग्नोसिस। आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण 13 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है, जो 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख रहेगी 7 अगस्त 2026 को शाम 5:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा स्मारक केंद्र की वेबसाइट sctrec.gov.in। आवेदन ऑनलाइन ही जमा करना अनिवार्य है। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार आमंत्रित करता है प्रशासन सह लेखाधिकारी के एक पद को भरने के लिए आवेदन। ये पद प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। आवश्यक पात्रता मानदंड और अन्य सामान्य नियम एवं शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.naturopathyday.in। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर भारत सरकार आमंत्रित करता है लीड कंसल्टेंट कम्युनिटी प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर NHSRC के एक पद को भरने के लिए आवेदन। आयु 55 वर्ष और उससे कम होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.mohfw.gov.in तथा nhsrcindia.org। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किए जाने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 4 अगस्त 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे की इस मुलाकात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के आज के इस अंक में आपके साथ मैं हूँ मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: Hello Mukesh, hello and a very warm welcome to the news magazine program Parikrama on 100.1 MHz on the FM Gold Network. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Mukesh Kumar Bal.

0: adjourn for the day amid opposition uproar over several issues.
1: हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.
0: Families of injured Delhi police personnel during CJP protest demand justice, call for greater protection during public demonstrations.
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर.
0: एंड फ्लड सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी ग्रीम इन ओडिशा, नियरली 8 लाख पीपल बैडली अफेक्टेड इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स. And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And first in the series, today we pay tribute to freedom fighter Udham Singh.

0: Today, the nation bows in respect and gratitude as we remember the great revolutionary freedom fighter, Shahid Udham Singh, on his 87th martyrdom day.
1: जी बिल्कुल अभिषेक, उधम सिंह का नाम अगर हम बात करें तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में साहस, त्याग और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में दर्ज है।
0: उधम सिंह was deeply affected by the tragic जलियांवाला बाग massacre of 1919. He carried the pain of that horrific event in his heart for years and vowed to seek justice for the innocent lives that were lost.
1: उसी संकल्प को पूरा करते हुए 13 मार्च 1940 को उन्होंने तत्कालीन मुगलिया हुकूमत में पंजाब प्रांत के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जो उस नरसंहार का कारण बनी नीतियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था।
0: A member of the Gadar Party and the Hindustan Socialist Republican Association, Udham Singh believed that India's freedom was worth every sacrifice.
1: Udham Singh के आदर्श उनके साथी क्रांतिकारी और दोस्त भगत सिंह जैसे ही थे। अपने मुकदमे के दौरान भी उधम सिंह ने निडर होकर क्रांति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खत्म करने के नारे लगाए थे।
0: On 31 July 1940, he was hanged at the Pentonville prison in London. Though his life was cut short, his courage continues to inspire generations of Indians.
2: आज हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं। उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे। वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे। उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा,
3: आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे।
2: भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा,
3: हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं। वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं। भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है। मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है, लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं।
2: उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे।
3: शहीद आजम उधम सिंह को पेंटोविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया। 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार, करतारपुर साहिब, रोजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए। शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए। आकाशवाणी की ओर से

0: महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह को शत शत नमन।
1: श्रोताओं, आज जब हम ऊधम सिंह को याद कर रहे हैं तो हम उन अनगिनत ज्ञात और अज्ञात नायकों को भी स्मरण करते हैं जिनकी शहादत ने हमें स्वतंत्र भारतवर्ष में सांस लेने का सौभाग्य दिया है।
2: Yes, Mukesh, and the legacy reminds us that true patriotism lies not only in honoring our past, but also in working together to build a united, peaceful and progressive India.
1: तो श्रोताओं, नमन है माँ भारती के ऐसे वीर सपूत ऊधम सिंह और उनके जैसे ना जाने कितने ही रणबांकुरों को।
2: Yes, so Jai Hind, let us always cherish the sacrifices that gave us the freedom we enjoy today.

0: Yes, sir. Now moving on to our next topic, the Mission Shakti app.
1: क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इमरजेंसी में तुरंत सहायता की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे?
0: That's an important question, Mukesh. And the good news is that there's now an easier way to access essential helpline services through the Mission Shakti app.
1: बिल्कुल अभिषेक, ये ऐप महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह की इमरजेंसी और सपोर्ट सर्विस को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है.
0: And that's not all, Mukesh. The Mission Shakti app is another step towards ensuring the safety, assistance and empowerment of women and children across the country.
1: ये ऐप कई जरूरी हेल्पलाइन तक तुरंत पहुंच प्रदान करती है, जिनमें महिला हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 और पोषण और पीएम मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन 1515 शामिल हैं.
0: And also not to forget, Mukesh, National Cyber Crime Helpline 1930, NALSA Legal Aid 15100, Telemanas 14416 and the Child Helpline 1098.
1: अभिषेक, इसमें सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला भी शामिल है, इमरजेंसी रिस्पांस और कानूनी मदद से लेकर मानसिक स्वास्थ्य सहायता, साइबर क्राइम में सहायता, पोषण से जुड़ी जानकारी और बच्चों की सुरक्षा तक, ये सभी एक ही जगह पर उपलब्ध हैं.
0: एंड सिटीजंस आर एनकरेज्ड टू डाउनलोड द मिशन शक्ति ऐप एंड कीप दीज वाइटल सर्विसेज विद इन इजी रीच.
1: और इस ऐप के बारे में अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जानकारी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कभी भी किसी को भी इन सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है.
0: एंड अ सिंपल डाउनलोड टुडे कैन हेल्प इंश्योर क्विक सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स.
1: जानकारी रखें, तैयार रहें और जागरूकता फैलाने में मदद करें.
0: यस, एंड टुगेदर वी कैन बिल्ड अ सेफर एंड अ मोर सपोर्टिव कम्युनिटी.
1: जी बिल्कुल. आज 31 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड रेंजर डे भी मनाया जाता है. ये दिन उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को समर्पित है जो हमारे जंगलों, वन्य जीवों और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करते हैं.
0: Yes, and the day also pays tribute to rangers who have lost their lives or been injured while safeguarding nature. Their courage and commitment help preserve biodiversity for future generations.
1: अवैध शिकार और जंगल की आग को रोकने से लेकर लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने तक रेंजर्स हमारे पर्यावरण के अग्रिम पंक्ति के रक्षक हैं.
0: एंड रेंजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स. दे स्टॉप इलीगल हंटिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स एंड हेल्प कीप द फॉरेस्ट क्लीन एंड सेफ.
1: अभिषेक, अगर रेंजर्स की अगर हम बात करें तो घायल जानवरों को भी ये लोग बचाते हैं और लोगों को प्रकृति की देखभाल करना भी ये लोग सिखाते हैं. उनकी कड़ी मेहनत से जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ बने रहते हैं.
0: एंड मुकेश, द वर्ल्ड रेंजर्स डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन एंड हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 2007 एंड दिस ईयर्स ऑब्जर्वेंस आल्सो हाइलाइट्स द ग्रोइंग चैलेंजेस रेंजर्स फेस, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ क्राइम.
1: तो अभिषेक, ये तो बात हुई रेंजर्स की जो हमारे वन्य क्षेत्रों को बचाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें भी प्रकृति के संरक्षण में अपना अपेक्षित योगदान देना चाहिए.
0: Absolutely. So together, let's value and support those who dedicate their lives to protecting the planet. Happy World Ranger Day.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है.
0: And straight away we start up with a story from Puducherry and South Asia's only annual international dance film festival, Manifest 2026, begins today at Vision Vivekanand Studio on Old Auroville Road near Puducherry. The three-day festival brings together filmmakers,

0: is marked by solemnity. There are no folk dances or songs, and its secret customs are carefully observed. Naknulam continues to remind the Chang community that even in the darkest moment, hope, faith, and unity will always lead the way to light. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
1: तो अभिषेक अब जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को खेल जगत से जुड़ी खबरों की। तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरमा ने भी महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने फाइनल में जगह बनाई।
2: Yes, and Australia continue to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. India's medal count includes 3 gold, 10 silver and 4 bronze.
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती या जन्मदिन।
3: आज हम स्वतंत्रता सेनानी धीरन तीर्थगिरी गौंडर को याद कर रहे हैं, जो धीरन चिन्नामलाई के नाम से लोकप्रिय थे। वे 31 जुलाई 1805 को वीरगति को प्राप्त हुए। गौंडर समुदाय के चिन्नामलाई पल्याक्कर युद्ध के कमांडरों में शामिल थे। 1801-1802 में उन्होंने पोलिगर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: धीरन चिन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के ईरोड के निकट मेलपलयम में 17 अप्रैल 1756 को हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की और चित्तेश्वरम, माजाहवल्ली और श्री रंगपट्टनम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: टीपू की मृत्यु के पश्चात चिन्नामलाई कोंगुनाडु के ओडानिलई में बस गए और वहाँ एक किले का निर्माण कराया। उन्होंने 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलई और 1804 में आर्चालूर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया।
4: तोप के हमले से बचने के लिए चिन्नामलाई ने किला छोड़ दिया और पलानी के करुमलई क्षेत्र में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1805 को संकागिरी किले में फांसी दे दी। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन।

0: उम्मीद है कि ये खूबसूरत आवाज़ तो आपने पहचान ही ली होगी, लेकिन सोचिए कैसी आवाज़ जो कभी प्रेम की मिठास बनकर गूंजी, कभी विरह की कसक बनी, कभी भक्ति में डूबी और कभी देशभक्ति का जज्बा बनकर सुनने वालों के दिलों में उतर गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, हिंदी सिनेमा की उन महान आवाज़ों में से एक जिनके गीतों ने कई पीढ़ियों को यादों के सुर दिए। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खासियत थी कि उनकी आवाज़ की बहुरंगी दुनिया एक और चौदहवीं का चांद हो जैसी मोहब्बत की नज़ाकत, तो दूसरी ओर मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसी भक्ति और कर चले हम फिदा जैसा देश प्रेम, हर गीत में उनका अंदाज अलग लेकिन उतना ही असरदार रहा।
1: Yes, and he was awarded the Padma Shri by the Government of India in 1967, and he won Filmfare Award 6 times for Best Playback Singer and National Film Award. He won one National Film Award, Mukesh.
0: Ji.
1: So Akashvani pays tribute to the legend.
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
3: A voice that eclipsed an era, a voice of boundless versatility and an octave that knew no limits, it was Mohammad Rafi whose sublime songs redefined what it meant to sing.

0: पहले कोरस गवाया था हमने, 10 रुपए उसके दिए थे उनको, हिंदुस्तान के हमें हिंदुस्तान हमारा एक कोरस था, तो कहने कोरस में गवा दीजिए, तो हमने कहा उसमें तुम्हें क्या मिले, कहने साहब मौका मिल जाएगा गाने का, तो 10 रुपए उनको दिए गए थे, वहां से उनकी शुरुआत हुई।
1: Rafi was popular throughout the cinema world and beyond. His voice embraced a vast spectrum of melodies, including songs of nationalistic fervor, romantic numbers, expressions of tragedy, comedic joys, and high-end philosophies.

0: franchise by Warner Bros.
1: हामिद के पास केवल 3 पैसे थे और उन पैसों से उसने खिलौने नहीं खरीदे बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा ले आया। बचपन में सुनी ये कहानी शायद आज भी आपको याद हो। एक छोटा सा हामिद ईद का मेला और अपनी दादी अमीना के लिए खरीदा गया वो चिमटा। कहानी ख़त्म हो जाती है लेकिन हामिद की मासूमियत और उसके छोटे से त्याग की तस्वीर मन में बहुत देर तक बनी रहती है। यही खासियत थी मुंशी प्रेमचंद की लेखनी की कि उनकी कहानियों में के किरदार हमारे आसपास के साधारण लोगों में से ही होते थे लेकिन उनकी भावनाएं इतनी सच्ची होती थीं कि वे पाठक के अपने से लगते थे पाठकों को। 31 जुलाई 1880 को जन्मे मुंशी प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, हिंदी और उर्दू के महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन जैसे उपन्यास और ईदगाह, पूस की रात, कफन जैसी कहानियाँ उनके द्वारा दी गई हिंदी साहित्य को अमूर्त देन हैं।
0: Yes, and we also remembering Antoine Toussaint Tagopéry, who passed on this day in 1944. He was an aristocratic French aviator, poet, journalist, and world-renowned author, best known for writing the timeless masterpiece, The Little Prince, La Petite Prince. His literature remains unique because it directly blends the high-stakes peril of an early aviation with deeply poetic, humanistic philosophies. And also Mumtaz was born on this day in 1947, known mononymously as Mumtaz. She's an actress who worked in Hindi films, initially a child actor and later appearing in some films. She established herself as one of the leading and the highest paid actresses of late 60s and early 70s. Let's listen into a dialogue from one of her movies.
2: Current lagana, mera naam bijli hai, current marti hu. Aur kyun be? Chori karne ke liye tere ko mera hi dhaba mila tha kya?

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार बल और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
1: नमस्कार।

0: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
3: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3,300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार

0: हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारम्भ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मोपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு அலைவரிசை. நேரம் 6:05. நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கும் முன் விளம்பரம்.
2: Indian Air Force is inviting applications from eligible boys girls to join as Agniveer Vayu musician. Pre-registered rally planned at Delhi and Bengaluru from 31st August to 9th September 2026. For details visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.
3: இதை கேளுங்கள், உங்களுடைய வேலைகளுக்கு இடையில் இந்த முக்கியமான வேலையை மறந்து விடாதீர்கள்.
4: 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வரி செலுத்துபவர்களுக்கு வருமான வரி கணக்கை ITR 1 அல்லது ITR 2 தாக்கல் செய்ய வேண்டிய கடைசி தேதி July 31, 2026 ஆகும்.
3: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு முன் உங்கள் AIS மற்றும் ஃபார்ம் 26AS ஐ கவனமாக சரிபார்த்து வெளிநாட்டு வருமானம் அல்லது வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் குறித்த சரியான மற்றும் முழுமையான விவரங்களை வழங்கவும்.
4: வருமான வரி தாக்கல் படிவத்தில் சரியான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை வழங்குவது விரைவான டாக்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு வழிவகுக்கும். துல்லியமான டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் என்றால் விரைவான டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்.
3: ஒவ்வொரு வரி செலுத்துவோரும் நாட்டை கட்டி எழுப்புபவரே இந்திய அரசின் வருமான வரித்துறை.
2: Indian Air Force is inviting applications from eligible boys girls to join as Agniveer Vayu musician. Pre-registered rally planned at Delhi and Bengaluru from 31st August to 9th September 2026. For details visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.
5: வீட்டு செலவுக்கு பணம் கொடுங்க ஹஸ்பண்ட் சார்.
6: இந்த மளிகைக்கு 15,000, காய்கறிக்கு 2,000.
5: அப்புறம் கரண்ட் பில்லுக்கு
6: இப்பதான் ஜீரோ ஆச்சே, எப்படி கொடுக்க முடியும்?
5: ஆமாங்க, மறந்துட்டேன், சோலார் பேனல் தான் மாட்டியாச்சே. அப்போ மிச்சமான அந்த 4,000 ரூபாய்க்கு ஷாப்பிங் போலாமே.
6: கண்டிப்பா, பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் இப்போதே PM Suryaghar.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
7: ஹர் ஹர் சூர்யாகர்.
2: Indian Air Force is inviting applications from eligible boys girls to join as Agniveer Vayu musician. Pre-registered rally planned at Delhi and Bengaluru from 31st August to 9th September 2026. For details visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.
1: 6:30 இரவு, 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 7:10 இளைய பாரதம், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் த கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் ஆஃப் த லைஃப், பி சஹீரா வழங்கும் உரை, த வாய்ஸ் ஆஃப் த காமன் பீப்புள்

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गोस्वामी। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM की, जो देश में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। वर्ष 2016 में नीति आयोग के तहत शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स तक एक सशक्त नवाचार तंत्र का निर्माण करना है, ताकि युवा केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले बन सके। श्रोताओं, पिछले लगभग एक दशक में अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में नवाचार की मजबूत नींव तैयार की है। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों, नवाचार से जुड़े युवा और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिला है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को 31 मार्च 2028 तक 2,750 करोड़ रुपए के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश के नवाचार और उद्यमिता तंत्र को और अधिक व्यापक, समावेशी, तकनीक सक्षम तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। श्रोताओं, इस मिशन की बढ़ती महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ही राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े नवाचार करने वाले लोगों के साथ संवाद किया है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई, अटल इनोवेशन मिशन 1.0 की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में कौन कौन से नए प्रावधान किए गए हैं और यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को किस प्रकार नई मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत लंबे समय से प्रतिभा और ज्ञान की भूमि रहा है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना माना जाता रहा। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह महसूस किया गया है कि केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच, रचना

0: रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता और उद्यमशीलता का विकास भी आवश्यक है। आइए विस्तार से जानते हैं पहली रिपोर्ट में।
1: अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य केवल स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों तक नवाचार की पूरी श्रृंखला को जोड़ना है। विद्यालय स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स इस मिशन की सबसे प्रमुख पहल है। इन प्रयोगशालाओं में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन थिंकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव दिया जाता है। इनका उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। विद्यालयों के बाद विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन, प्रयोगशाला सुविधाएं, निवेशकों से संपर्क और व्यवसाय विकसित करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक अवसरों पर ये कह चुके हैं कि अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनक्यूबेशन सेंटर जैसे प्रयास देश में नवाचार की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।
2: हमने देश में इनोवेशन का माइंडसेट विकसित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया। इसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स और हैकेथॉन जैसा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। आज देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रहे हैं। इनमें 75,00,000 से अधिक बच्चे आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं, इनोवेशन की ABCD सीख रहे हैं। देश भर में बन रही ये अटल टिंकरिंग लैब्स एक प्रकार से स्टार्टअप की नर्सरी के रूप में काम कर रही है। जब विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे तो उसके पास जो नया आइडिया होगा उसको इंक्यूबेट करने के लिए देश में 700 से अधिक अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तैयार हो चुके हैं।
1: वर्तमान में देश भर में अटल इंक्यूबेशन सेंटर माध्यम से लगभग 3,500 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग मिला है, जिन्होंने 32,000 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इनमें लगभग 1,000 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में संचालित हो रहे हैं, जो महिला उद्यमिता को भी नई दिशा दे रहे हैं। इसी प्रकार दूर दराज और आकांक्षी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य टियर 3 शहरों, जनजातीय, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों तक नवाचार का लाभ पहुंचाना है। मिशन के अंतर्गत अटल न्यू इंडिया चैलेंज और ARISE कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं के समाधान विकसित करते हैं। वहीं मेंटर इंडिया द मेंटर्स ऑफ चेंज कार्यक्रम के माध्यम से 6,000 से अधिक विशेषज्ञ और उद्योग जगत के अनुभवी लोग विद्यार्थियों और नव प्रवर्तकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन के पहले चरण ने देश भर में नवाचार की मजबूत नींव तैयार की। अब सरकार इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2.0 लेकर आई है। इसके तहत केवल नए संस्थान स्थापित करने पर ही नहीं, बल्कि नवाचार को अधिक समावेशी, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं अगली रिपोर्ट में।
3: अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का उद्देश्य केवल पहले से स्थापित संस्थानों का विस्तार करना नहीं है, बल्कि देश में नवाचार की पूरी प्रक्रिया को अधिक समावेशी, प्रभावी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके लिए मिशन को 3 प्रमुख आधारों पर तैयार किया गया है। पहला, नवाचार से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना। दूसरा, स्टार्टअप्स और नवाचारों की सफलता दर को बेहतर बनाना। और तीसरा, ऐसे उत्पादों, सेवाओं और रोजगार का सृजन करना जो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए AIM 2.0 के अंतर्गत कई नई पहल शुरू की जा रही हैं। इनमें भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम यानी लिपि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके माध्यम से भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अंग्रेजी भाषा की बाधा प्रतिभाशाली नव प्रवर्तकों की प्रगति में रुकावट न बने। इसके लिए देश भर के इनक्यूबेटरों में 30 वर्नाक्युलर इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार फ्रंटियर कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों तथा आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यक

0: आवश्यकताओं के अनुरूप मॉडल विकसित किए जाएंगे और 2500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन को मजबूत बनाने के लिए मानव पूंजी विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत नवाचार और उद्यमिता से जुड़े प्रबंधकों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 5500 पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड विकसित देशों के साथ नवाचार सहयोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के साथ साझेदारी तथा G20 स्टार्टअप 20 पहल को और सुदृढ़ बनाने की योजना है।
1: श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन की सफलता केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 12 अगस्त 2025 को आयोजित मेगा टिंकरिंग दिवस ने नवाचार के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। देश भर के 9467 अटल टिंकरिंग लैब्स के 4,73,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक ही दिन स्वच्छ भारत विषय पर समाधान विकसित करते हुए स्वयं अपना वैक्यूम क्लीनर तैयार किया। इस अनूठी उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन आज केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत में नवाचार आधारित विकास की एक व्यापक जन भागीदारी का माध्यम बन चुका है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में नवाचार, अनुसंधान, विज्ञान और उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में अटल इनोवेशन मिशन भारत की युवा शक्ति को नई सोच, नई तकनीक और नए अवसरों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। सेंसेक्स गेन्स ओवर 150 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट अराउंड 24,400। In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 150 अंकों से अधिक की तेजी आई। निफ्टी 24,400 के स्तर के आसपास पहुंचा। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 18% का उछाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान की।

0: And before we take the top story of the day, an important announcement for the listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं खबरों के साथ में। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 166 अंक यानी 0.2% ऊपर चढ़कर 78,095 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 66 अंक यानी 0.3% की तेजी के साथ 24,384 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत

0: बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में आज 0.4% का उछाल आया। इससे पहले बाजार आज मजबूती के साथ खुले और दिन के पहले हिस्से में सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन दोपहर के सत्र में दोनों सूचकांकों में तेजी देखी गई।
1: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the third consecutive session today. The Sensex rose 166 points or 0.2%.

0: and traded in a narrow range during the first half before gaining momentum during the afternoon session.
1: सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस में 8.1% से ज्यादा, बजाज फिनसर्व में 6.6% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.6% की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ TCS और Eternal में लगभग 2.7% की गिरावट देखी गई, Infosys लगभग 2.3% नीचे आ गया और ITC में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 19 out of 27 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, auto advanced 2%, capital goods rose 1.8% and industrials gained 1.3%. In contrast, IT lost 1.4%, focused IT slipped 1.2% and FMCG fell 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,568 companies advanced, shares of 1,653 companies declined and shares of 204 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 29 पैसे मजबूत हुआ और 95.39 रुपए पर बंद हुआ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज के मार्केट पर अगर नजर डालें तो तीसरा लगातार दिन था जब बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ और इस पूरे महीने का ये आखिरी कारोबारी दिन था, इस हफ्ते का भी आखिरी कारोबारी दिन था। पिछले हफ्ते को देखें तो काफ़ी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस सप्ताह जो हम थोड़ी सी तेज़ी देख रहे हैं मार्केट में, तो इसे FIS की बढ़त मानते हैं या DIS की बढ़त मानते हैं या और भी कोई कारण रहा जिसकी वजह से ये लगातार चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं?
2: देखिए, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं निखिल, और FIIs का जो रोल रहा है इसमें वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर हम इस कार्यक्रम में कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, FIIs जब ज़्यादा निवेश करती हैं या जो FIIs हैं वो जब अपना पैसा निकालती हैं तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है ना ही, तो जब वो पैसा बाजार से अपना हटा रही हैं तो ये इस बात का परिचायक बिल्कुल नहीं है कि अब तो सब बिल्कुल ख़राब है। और अगर FIIs पैसा वापस लेके आ रही हैं तो वो पहले वाले सिनेरियो के बनिस्बत जो है यहाँ थोड़ा सा वो प्रोत्साहन दिखाई देता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास अपार संभावनाएं हैं, उनकी नज़रें दुनिया भर के बाजारों पर हैं और अगर उनको और उनका मार्जिन बहुत कम है
1: जी।
2: तो अगर उनको लगता है कि भारत के बाजार से हटके किसी और बाजार में उनको शायद 0.5% या 0.2% अगर फायदा शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो वो उस फायदे की ओर जाएंगे। लेकिन FIIs का जो वापसी है और खासतौर पर पिछले 3 दिन से और बृहस्पतिवार के आंकड़े शायद आपने दिए होंगे, लगभग 3,600 करोड़ के आसपास FIIs की इन्वेस्टमेंट है जिसे एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कहा जा सकता है और वो दर्शाता है कि बाजार की जो स्थिति है वो केवल ये एक या दो दिन के लिए नहीं थी, ये एक सस्टेन रैली थी जो कि अब बनी हुई है। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि हम अगर IT सेक्टर की तरफ नजर डालें तो उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन उसका भी एक कारण है, वो कारण ये है कि उसमें जो रैली बनी थी बाजार में ओवरऑल जो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा था उससे पहले ही पॉजिटिव सेंटीमेंट वो IT सेक्टर में दिखना शुरू हो गया था और आज IT सेक्टर में बिकवाली का दौर रहा, बिकवाली का दिन रहा, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें गिरावट जरूर देखने को मिली। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है, दूसरा रुपए की जो स्थिति है यानी कि भारतीय रुपया जो है उसकी स्थिति में जो सुधार लगातार धीरे धीरे धीरे धीरे होता दिखाई दिया उससे भी बाजार में और बाजार के निवेशकों में एक जिसे कहा जाए थोड़ा सा हौसला उनका बढ़ा है। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो मैं कहूँगा, हालांकि एक नज़रिया इसका ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी कम वॉलेटाइल है, मैं कहूँगा थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है। तो गिलास आधा भरा है या आधा खाली है उसी नज़रिए से देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी चल रही है उसके चलते, उसके मुकाबले देखा जाए तो मुझे लगता है कि हालात पिछले 3-4 दिन में थोड़े से बेहतर जरूर है।
0: विशाल, यू जस्ट मेंशन द IT, द रैली इन द IT स्टॉक्स दैट वी सॉ अर्लियर ऑन, बट टुडे ऑफ कोर्स लाइक वी आर सेइंग द इफ यू लुक एट द सेक्टोरल इंडिसेस, द IT लॉस्ट 1.4%, फोकस्ड IT स्लिप्ड 1.2%. Now, a little later in the program, when we discuss, you know, when we talk about the Asian markets and we will see, and also the US markets, all over these markets, the tech stocks, they rallied. But despite that, we have seen our own IT sector being a laggard. Why?

0: is that, you know, this is not likely to remain so for long because, as I said earlier, the nature of this industry is such that it will change very quickly. You know, those who are still experimenting with it will have to adapt, will have to expose more. And of course, you know, they will reap benefits also. But in the process, there will be some tailwinds which will have to be taken care of.
1: Vishal, abhi thodi der pehle geopolitical baat kar rahe the, crude oil ki hum baat kar rahe the. Agar thoda sa niche aakar dekhe, mid cap aur small cap ki baat karte hain, ek उछाल हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि पिछले दिनों वो चीज़ नहीं देखने को मिली थी. अभी आपको लगता है कि जो एक सस्टेन सी चीज़ हो रही है पॉजिटिव इसे बनाने के लिए, वो उसका असर हमारे घरेलू निवेशकों का है या जो बाहर के जितने भी कारण उनका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है?
0: देखिए, ये आप एक बार फिर से निखिल, मिक्स एंड मैच अप्रोच रहती है, क्योंकि जो घरेलू कारण है जिन्हें हम घरेलू फैक्टर्स बोलते हैं,
1: मॉनसून का इसमें कितना रोल है?
0: जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, डोमेस्टिक फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सीजन क्या है, यानी कि मौसम क्या है. सीजन मॉनसून का है और मॉनसून की गति जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं थी, तो उसका असर थोड़ा सा जरूर देखने को मिलता है. लेकिन दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किसी भी सेक्टर को लेकर जो पॉलिसीज हैं उनकी कंसिस्टेंसी क्या है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, यानी कि वो कंसिस्टेंट है. तीसरा होता है कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो कैसा है, चाहे वो हम स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें. लेकिन उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल फैक्टर्स का भी है, क्योंकि उनका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ता है, सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई चेन है उस पर भी पड़ता है, एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन पे भी पड़ता है. तो वो उसका असर जरूर देखने को मिलता है. बड़ी कंपनियों का डेटा देखें तो शायद वो पहले दिन देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा असर, छोटी कंपनियां जब स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं तो उन पे भी असर पड़ता है. वो आंकड़े छोटे जरूर हो सकते हैं लेकिन असर उतना ही है.
1: जी, टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. संचालन गतिविधियों से कंपनी का सकल राजस्व वर्ष दर वर्ष 14% से अधिक बढ़कर 60,794 करोड़ रुपए रहा. वहीं कंपनी का सकल लाभ वार्षिक आधार पर 12% की तेजी के साथ 2,318 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है.
2: Bajaj Finserv Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose over 19% year-on-year to 42,037 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased around 12% to 3,132 crore rupees on an annual basis. ITC Limited also reported its financial results today. The company's consolidated revenue from operations rose around 28% year-on-year to 29,523 crore rupees. The firm's consolidated net profit for this quarter attributable to the owners fell over 16% to 4,394 crore rupees on an annual basis. Maruti Suzuki India Limited reported its financial years for the first quarter of the current fiscal. The company's consolidated revenue from operations rose around 36% year-on-year to 52,469 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners fell over 9% to around 3,447 crore rupees on an annual basis. And let's also have a quick look at the results for Sun Pharmaceutical Industries Limited. The company's consolidated revenue from operations rose around 10.5% year-on-year to 15,300 crore rupees. Its consolidated net profit increased 27% to around 2,895 crore rupees on an annual basis.
1: और अब एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज चिप स्टॉक्स में फिर से खरीदारी देखने को मिली. इसी वजह से दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 17.9% ऊपर पहुंच गया. ये ऐसा मौका था जिसने पिछले तीन दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. ताइवान के ताइएक्स में आज 8% का उछाल देखा गया और जापान के निक्केई 225 में 4% की बढ़त दर्ज हुई. इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी रेट को 1% पर ही बनाए रखा है. हालांकि अपने बयान में बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से कोर महंगाई दर के 2% से ऊपर जाने की संभावना है. यूरोप के शेयर बाजार की बात करें तो प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.3% के लाभ में था और लंदन का फुटसी 100 0.2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. वहीं यूरोप क्षेत्र में सालाना महंगाई दर इस साल जुलाई में थोड़ी बढ़कर 2.9% हो गई है, जो जून में 2.8% थी. यूरोस्टेट के शुरुआती अनुमान के अनुसार सालाना आधार पर ऊर्जा कीमतों में

0: 10% की बढ़ोतरी हुई, जबकि जून में ये 8.5% थी। विशाल जी, मेरे दो प्रश्न है आपसे। पहला प्रश्न तो यही, कॉस्पी की भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, कई दिनों से लंबा लंबा उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से बैंक ऑफ जापान तमाम स्थितियों को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी अप्रोच से आपको क्या लगता है, किस तरह की अप्रोच ये रख रहे हैं?
1: देखिए, ये जो बाजार है, खासतौर पर कॉस्पी और निकेई की अगर हम बात करें, तो दोनों में जिस तरह की वॉलिटिलिटी पिछले लगभग कई हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही थी, तो ये उम्मीद ज़रूर की जा रही थी खासतौर पर जापानी सेंट्रल बैंक से कि वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन ज़रूर करेगा, क्योंकि ये आप थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाके देखें तो हमेशा ये एक स्ट्रक्चर भी रही है कि जब बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी निकेई में देखने को मिलती है तो जापानी सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन, मैं बड़ी जल्दी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कॉशन अप्रोच के साथ ज़रूर होता है, तो वो हमें देखने को मिला है। और वो उसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस रीजन के लिहाज से भी है, तो वो भी उसका क्या नजरिया रहेगा। जहां तक कॉस्पी की बात है, तो कॉस्पी में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसके लिए मैं ज्यादातर अगर एनालाइज करके देखा जाए तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उन्हीं की तरफ नज़र ज़रूर जाती है। अब आज जो मोटे तौर पर जो चढ़ाव, जो बाज़ार में जो बढ़ोतरी देखने को मिली, वो केवल जो टेक स्टॉक्स हैं, खास तौर पे सैमसंग या फिर और जो दो तीन बड़े कंपनियां हैं वहाँ पर, उनमें उनका जो प्रदर्शन रहा, उस प्रदर्शन के बनिस्पत उसकी बदौलत देखने को मिली। और अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दोनों बाज़ारों पर नज़र रखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक नज़रिया आपको मिलता है कि बाकी जो एशियाई बाज़ार हैं, भारत के नज़रिए से देखें तो वहाँ क्या हालात चल रहे हैं। और जो जिन हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं, वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने को मिलता है कि क्या हम ही पे उसका असर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है।
2: जी, लेट्स मूव ऑन टू यूएस मार्केट्स। मेजर यूएस इंडिसेस रैलीड यस्टरडे लेड बाय गेन्स इन चिप स्टॉक्स। द नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स जंप्ड 2.8%, एंडिंग अ 6-day losing streak. The S&P 500 rose almost 1.7% and the Dow Jones Industrial Average settled 1.2% higher. Meanwhile, the U.S. economy grew at a slower pace in the second quarter of this year, according to the advanced estimate released by the U.S. Bureau of Economic Analysis, BEA. Real gross domestic product increased at an annual rate of 1.5%, down from 2.1% in the first quarter. A separate report by the BEA showed that personal consumption expenditures, or the PCE price index, rose 3.7% in June on an annual basis, easing from a 4.1% increase in May. On a monthly basis, it contracted by 0.1% from a rise of 0.5% in May. Vishal, a very quick comment on you from on the U.S. market. So we have discussed it a little bit earlier on.
1: Well, as far as, bond yields specifically we're looking at, because we've spoken about U.S. markets.
2: Yes.
1: So if you're looking at the bond yields part here, let's try and understand, bond yields do signify how a country's economy is working, what actually is happening within that country's economy. Now, if the yields rise, then the situation is not very hunky-dory. I'm not saying it's very bad, because if the economic situation is really bad, then the yields will not rise, they will fall. But if, because the investors would want to go to the safety of the bonds, but the investors do keep a watch on what's happening as far as inflation rates are concerned, as far as the central bank rates are concerned. Now, recently, the Fed has given an indication that there is a possibility of at least 25 basis point hike in September. Now, that is something which is pushing this, increase in the yields. Secondly, is the inflation data. The inflation data in the United States is a cause of concern for a very long time now. And that is another big contributor to the data which we see in 30-year bond yields or 10-year bond yields. Even the short-term, 2-year bond yields, we've seen a significant increase. So that is how it is working. And we get a clear picture of what is happening in the market, in the country's economy, if you just look at the bond yields.
2: Right.
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला के कार्यक्रमों का एक व्यापक समूह समाहित करती है।
3: एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन।

0: सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज हैं मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू गेट द एक्चुअल डेटा वेदर देर इज ऑयल और गैस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। विशाल, दो बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, इसमें आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा। सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के लिए तमाम तरह के उपकरणों की जरूरत होती है, जिसका विनिर्माण भारत में थोड़ा सा भी कम होता है, अब उनको बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है, इससे मार्केट को कितना लाभ होने की संभावना है?
2: देखिए, जो हम थोड़ी देर पहले एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे, सीधे तौर पर इसका बेनिफिट उसे मिलने वाला है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में एक एक एक नया जिसे कहा जाए ऑप्शन रहेगा बढ़ोतरी के लिए, बढ़ावे के लिए, और इसका स्केल जो है इस स्कीम का वो कोई बहुत छोटा नहीं है। दूसरा, जो आपने समुद्र मंथन योजना की बात की, मैं उस पर जरूर दो सेंटेंस बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे जो पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, हमारा देश लगभग 80-85% के आसपास अपनी जो क्रूड ऑयल जो है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन स्कीम है, उसके चलते हम अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे, और इस तरह के जब अगर झटका अगर आगे कहीं देखने को मिले तो उससे हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। और लगभग मैं ONGC की वेबसाइट पर भी अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, लगभग 2-2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसे एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि एक वृद्ध स्तर पर ये एक कोशिश है कि जिसे हम सेल्फ रिलायंस इन ऑयल प्रोडक्शन की तरफ, जो हमारे कदम है पेट्रोलियम प्रोडक्शन की तरफ, उसमें इसमें बढ़ोतरी मिलेगी।
1: जी। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ही ब्याज देय होगा।
3: Commodity prices. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $90.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% up at $85.77 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 0.4% down at 1,43,500 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.1% down at 2,17,930 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आज 1% की गिरावट के साथ 1,41,869 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.2% गिरकर 2,17,309 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। विशाल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से क्रूड ऑयल मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा और गिरावट ज़्यादा देखने को मिली, बढ़त उतनी शायद हमें देखने को नहीं मिली, और दूसरी तरफ जो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी जिसे कह सकते हैं, दोनों पर क्या कहेंगे आप?
2: देखिए, मैं तो ये यही कहूँगा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा और कम नीचे हो तो उसका सीधा फायदा हमको मिलेगा। और जहाँ तक सोने और चांदी की बात है, तो ये तू डाल डाल मैं पात पात का रिश्ता है सोने चांदी का, जो है क्रूड ऑयल के साथ या इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके साथ। तो देखते हैं अब किसको ज़्यादा फायदा मिलता है। क्रूड ऑयल स्टेबल रहेगा तो आम जनता को सीधे तौर पर फायदा है, और सोने चांदी की चमक तो सब लोग देखना चाहते हैं।
3: जी विशाल, वी आर टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस, बट आई वांट टू यू नो कनेक्टेड टू अनदर थिंग। वी हैव द RBI's मंथली पॉलिसी मीटिंग कमिंग अप नेक्स्ट वीक, फ्रॉम मंडे इट विल बी देयर। सो what is your expectation from that meeting?
2: I largely believe and very strongly believe that you know, the RBI is likely to keep it steady, keep the ship steady. No interventions as of now. I don't think the RBI would like to intervene at this point in time. There might be some cautionary statements which might be coming in from RBI, but largely I think it's going to be the same as usual.
3: Right. And do you think one of the factors, or rather, it's again speculation, but do you think the factors that may, whatever the decision the RBI ultimately takes, of course the international crude oil prices would

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जाँच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रिड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद

0: वाहनों की आवाजाही सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatts.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स नॉट टू द नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम समुद्र मंथन विद एन अप्रूव्ड आउटले ऑफ 84,084 करोड़ रुपीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन अप टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme for 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees have been approved for the scheme during the period of 5 years. Mr. Vaishnav said the approval reiterates the government's commitment that the prosperity of farmers forms the foundation of the nation's prosperity. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest of the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nithyananda Rai, moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticized the opposition for not participating in the discussion. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது சன்செட் சமீக்ஷா. நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்த விமர்சனம் ஹிந்தியில் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि

दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है। आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है PTI भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की

स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूँ लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है।

0: और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசை. நேரம் 8:15.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்ட் 100.1.
1: நேயர்கள் இனி கேட்கலாம் திரை கானம். நிகழ்ச்சி கேட்கும் முன் பாரதிய சேனா.
3: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை ததா பாரத் கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है। रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி ஆங்கில செய்தி தொகுப்புகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
3: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है।

0: 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा

0: कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहाँ के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी, तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी

0: मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain.
2: Exploration ke liye aur uske baad mein production ke liye बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not.
1: The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31.

0: के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीरामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबी जीरामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में आज अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता ने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया, वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादुमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज

0: से विश्व दर्पण के साथ में मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान विस्फोट में मृतकों की संख्या 34 हुई। मोरक्को से स्पेन में पिछले 24 घंटे में लगभग 60,000 प्रवासी घुसे, सीमा पार करते हुए 34 लोगों की मृत्यु। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों पर लगातार दमनकारी कार्रवाइयां की जा रही हैं।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: श्री रणधीर जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत रूस की सेना में मौजूद शेष भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए रूस से लगातार संपर्क में है। अमेरिका से भारतीयों के प्रत्यर्पण के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष 1,260 भारतीयों को प्रत्यर्पित किया गया है। इस बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के विरुद्ध आज विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन POJK के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन SOS इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय खदान में 41 मजदूर थे। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे के नीचे फंसे शेष खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान अभी भी जारी है। मोरक्को से स्पेन के उत्तर अफ्रीकी एनक्लेव सेउता में लगभग 60,000 अवैध प्रवासी पिछले 24 घंटे में घुस चुके हैं। ये शहर की आबादी का लगभग 70% है। इस दौरान कम से कम 34 प्रवासियों की मृत्यु हो गई है। सेउता के मेयर जुआन जीसस विवास ने इस स्थिति को पूरी तरह से अस्थिर और असहनीय बताया। सीमा संकट कल से और अधिक गंभीर हो गया है, ये आज भी जारी रहा। इसमें सीमा के मोरक्को वाले हिस्से में सुरक्षा बलों और अवैध प्रवासियों के बीच झड़पें हुई। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इतने बड़े पैमाने पर सीमा पार करने की घटनाओं की निंदा करते हुए इसे स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। अल्जीरिया में आज एक बस दुर्घटना में 25 लोगों की मृत्यु हो गई और 44 अन्य घायल हो गए। अल्जीरियाई नागरिक सुरक्षा के प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार सैतिफ से राजधानी अल्जीयर्स जा रही बस फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बातचीत की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान वे प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्चिस से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में युद्ध की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर किसी भी परिस्थिति में हमले न करने पर पुरजोर आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। श्री मिश्री ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और विदेश मंत्री लियोनपो डी एन डुंगेल से भी भेंट की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि विदेश मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो रूस यूक्रेन युद्ध में शहीद, लापता या घायल हुए लोगों के परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने विदेश मंत्रालय को मृतकों के शवों का परिवार के सदस्यों से डीएनए मिलान करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय कथित तौर पर ट्रैवल एजेंटों द्वारा ठग जाने के बाद रूस की सेना में भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मालदीव ने अपनी त्वरित भुगतान प्रणाली फवारा को भारत के यूपीआई से जोड़ते हुए भारत में वास्तविक समय सीमा पार धन हस्तांतरण सेवा शुरू कर दी है।
1: मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने इसे दोनों देशों के बीच डिजिटल वित्तीय संपर्क और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस सुविधा के अंतर्गत मालदीव से भारत में लाभार्थियों को धन सीधे भारतीय रुपए में यूपीआई सक्षम खातों में भेजा जा सकेगा। शुरुआत में ये सेवा बैंक ऑफ मालदीव और मालदीव इस्लामिक बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये कदम MMA भारतीय रिजर्व बैंक, NPCI इंटरनेशनल लिमिटेड सहभागी वित्तीय संस्थानों और दोनों देशों के अन्य हितधारकों के बीच घनिष्ठ सहयोग को दर्शाता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के जूडो में आज अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता ने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उन्होंने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते।
2: 57 किलोग्राम कैटेगरी में निकिता सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। वहीं 49 किलोग्राम कैटेगरी में कामना बाबल ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया। जापान की साइका उचिडा से सेमीफाइनल में हारने के बाद कामना ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में रूस की इरना स्तीवा के खिलाफ शानदार वापसी की। भारतीय पहलवान ने कड़े मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंद्वी को हराकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। गरिमा ने 73 किलोग्राम वर्ग के स्पेन की पाउला बेनाइक्सा पेरिस के खिलाफ टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर कांस्य पदक जीता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान विस्फोट में मृतकों की संख्या 34 हुई। मोरक्को से स्पेन में पिछले 24 घंटे में लगभग 60,000 प्रवासी घुसे, सीमा पार करते हुए 34 लोगों की मृत्यु। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani.

0: Please do stand by for the news in Hindi and news in English, which follows shortly.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका

0: अप्रूवल लिया गया है 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
0: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं स्टूडियो में।

0: हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद निखिल।
0: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
2: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। सेंसेक्स गेन्स ओवर 150 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट अराउंड 24,400। In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security.
0: घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 150 अंकों से अधिक की तेजी आई। निफ्टी 24,400 के स्तर के आसपास पहुंचा। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 18% का उछाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान की।

0: And before we take the top story of the day, an important announcement for the listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं खबरों के साथ में। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 166 अंक यानी 0.2% ऊपर चढ़कर 78,095 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 66 अंक यानी 0.3% की तेजी के साथ 24,384 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में आज 0.4% का उछाल आया। इससे पहले बाजार आज मजबूती के साथ खुले और दिन के पहले हिस्से में सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन दोपहर के सत्र में दोनों सूचकांकों में तेजी देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the third consecutive session today. The Sensex rose 166 points or 0.2% to close at 78,095. The Nifty added 66 points or nearly 0.3% to settle at 24,384. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index as well as the Small-Cap 100 Index gained over 0.4%. Earlier, markets opened on a firm note and traded in a narrow range during the first half before gaining momentum during the afternoon session.
1: सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस में 8.1% से ज्यादा, बजाज फिनसर्व में 6.6% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.6% की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस और एटर्नल में लगभग 2.7% की गिरावट देखी गई। इन्फोसिस लगभग 2.3% नीचे आ गया और आईटीसी में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 19 आउट ऑफ 27 सेक्टर्स एंडेड इन पॉजिटिव जोन। अमंग द टॉप गेनर्स ऑटो एडवांस्ड 2%, कैपिटल गुड्स रोज 1.8% एंड इंडस्ट्रियल्स गेन्ड 1.3%। इन कॉन्ट्रास्ट आईटी लॉस्ट 1.4%, Focused IT slipped 1.2% and FMCG fell 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,568 companies advanced, shares of 1,653 companies declined and shares of 204 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 29 पैसे मजबूत हुआ और 95.39 रुपए पर बंद हुआ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज के मार्केट पर अगर नजर डालें तो तीसरा लगातार दिन था जब बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ और इस पूरे महीने का ये आखिरी कारोबारी दिन था, इस हफ्ते का भी आखिरी कारोबारी दिन था। पिछले हफ्ते को देखें तो काफी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस सप्ताह जो हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं मार्केट में, तो इसे एफआईएस की बढ़त मानते हैं या डीआईएस की बढ़त मानते हैं या और भी कोई कारण रहा जिसकी वजह से ये लगातार चीजें हमें देखने को मिल रही हैं?
2: देखिए, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं निखिल, और एफआईआईस का जो रोल रहा है इसमें वो काफी महत्वपूर्ण है और इस पर हम इस कार्यक्रम में कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, एफआईआईस जब ज्यादा निवेश करती हैं या जो एफआईआईस हैं वो जब अपना पैसा निकालती हैं तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है ना, ही तो जब वो पैसा बाजार से अपना हटा रही हैं तो ये इस बात का परिचायक बिल्कुल नहीं है।

0: वार्षिक आधार पर 12% की तेजी के साथ 2,318 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
1: Some more quarter one results now. Bajaj Finserv Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose over 19% year on year to 42,037 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased around 12% to 3,132 crore rupees on an annual basis. ITC Limited also reported its financial results today. The company's consolidated revenue from operations rose around 28% year-on-year to 29,523 crore rupees. The firm's consolidated net profit for this quarter attributable to the owners fell over 16% to 4,394 crore rupees on an annual basis. Maruti Suzuki India Limited reported its financial years for the first quarter of the current fiscal. The company's consolidated revenue from operations rose around 36% year-on-year to 52,469 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners fell over 9% to around 3,447 crore rupees on an annual basis. And let's also have a quick look at the results for Sun Pharmaceutical Industries Limited. The company's consolidated revenue from operations rose around 10.5% year on year to 15,300 crore rupees. Its consolidated net profit increased 27% to around 2,895 crore rupees on an annual basis.
0: और अब एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज चिप स्टॉक्स में फिर से खरीदारी देखने को मिली। इसी वजह से दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 17.9% ऊपर पहुंच गया। ये ऐसा मौका था जिसने पिछले तीन दिनों में से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। ताइवान के ताइएक्स में आज 8% का उछाल देखा गया और जापान के निक्केई 225 में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी रेट को 1% पर ही बनाए रखा है। हालांकि अपने बयान में बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से कोर महंगाई दर के 2% से ऊपर जाने की संभावना है। विशाल जी, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न तो यही, कॉस्पी की भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, कई दिनों से लंबा लंबा उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से बैंक ऑफ जापान तमाम स्थितियों को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी अप्रोच से आपको क्या लगता है, किस तरह की अप्रोच ये रख रहे हैं?
2: देखिए, ये जो बाजार है खासतौर पर कॉस्पी और निकेई की अगर हम बात करें तो दोनों में जिस तरह की वॉलिटिलिटी पिछले लगभग कई हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही थी, तो ये उम्मीद जरूर की जा रही थी खास तौर पे जापानी सेंट्रल बैंक से कि वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जरूर करेगा, क्योंकि ये आप थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाके देखें तो हमेशा ये एक स्ट्रक्चर भी रही है कि जब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी निकेई में देखने को मिलती है तो जापानी सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन मैं बड़ी जल्दी तो नहीं कहूंगा लेकिन एक कॉशन अप्रोच के साथ जरूर होता है, तो वो हमें देखने को मिला है और वो उसकी जरूरत भी थी क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस रीजन के लिहाज से भी है तो वो भी उसका क्या नजरिया रहेगा। जहां तक कॉस्पी की बात है तो कॉस्पी में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला उसके लिए मैं ज्यादातर अगर एनालाइज करके देखा जाए तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उन्हीं की तरफ नजर जरूर जाती है। अब आज जो मोटे तौर पर जो चढ़ाव जो बाजार में जो बढ़ोतरी देखने को मिली वो केवल जो टेक स्टॉक्स हैं खास तौर पे सैमसंग या फिर और जो दो तीन बड़े कंपनियां हैं वहां पर उनमें उनका जो प्रदर्शन रहा उस प्रदर्शन के बनिस्पत उसकी बदौलत देखने को मिली। और अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दोनों बाजारों पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां से एक नजरिया आपको मिलता है कि बाकी जो एशियाई बाजार हैं भारत के नजरिए से देखें तो वहां क्या हालात चल रहे हैं और जो जिन हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने को मिलता है कि क्या हम ही पे उसका असर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है।
0: जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला के कार्यक्रमों का एक व्यापक समूह समाहित करती है।
3: एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज है, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली, उस

0: एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है. और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू गेट द एक्चुअल डेटा वेदर देयर इज ऑयल और गैस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट.
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है. विशाल, दो बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, इसमें आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा. सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के लिए तमाम तरह के उपकरणों की जरूरत होती जिसका विनिर्माण भारत में थोड़ा सा भी कम होता है, अब उनको बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है, इससे मार्केट को कितना लाभ होने की संभावना है?
2: देखिए, जो हम थोड़ी देर पहले एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे, सीधे तौर पर इसका बेनिफिट उसे मिलने क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में एक एक एक नया जिसे कहा जाए ऑप्शन रहेगा बढ़ोतरी के लिए, बढ़ावे के लिए, और इसका स्केल जो है इस स्कीम का वो कोई बहुत छोटा नहीं है. दूसरा, जो आपने समुद्र मंथन योजना की बात की, मैं उस पर जरूर दो सेंटेंस बोलना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है. हमारा देश लगभग 80-85% के आसपास अपनी जो क्रूड ऑयल जो है, जो हमारी जरूरतें हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन स्कीम है उसके चलते हम अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे. और इस तरह की जब अगर झटका अगर आगे कहीं देखने को मिले तो उससे हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे. और लगभग मैं ONGC की वेबसाइट पर भी अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, लगभग 2-2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसे एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि एक वृद्ध स्तर पर ये एक एक, एक कोशिश है कि जिसे हम सेल्फ रिलायंस इन ऑयल प्रोडक्शन की तरफ, जो हमारे कदम है पेट्रोलियम प्रोडक्शन की तरफ, उसमें इसमें बढ़ोतरी मिलेगी.
1: इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी. इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं. जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ही ब्याज देय होगा.
3: Commodity prices. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $90.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% up at $85.77 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.4% down at 1,43,500 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.1% down at 2,17,930 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आज 1% की गिरावट के साथ 1,41,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.2% गिरकर 2,17,309 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. विशाल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से क्रूड ऑयल मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा और गिरावट ज्यादा देखने को मिली, बढ़त उतनी शायद हमें देखने को नहीं मिली, और दूसरी तरफ जो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी जिसे कह सकते हैं, दोनों पर क्या कहेंगे आप?
2: देखिए, मैं तो ये यही कहूंगा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा और कम नीचे हो तो उसका सीधा फायदा हमको मिलेगा. और जहां तक सोने और चांदी की बात है तो ये तू डाल डाल मैं पात पात का रिश्ता है सोने चांदी का, जो है क्रूड ऑयल के साथ या इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके साथ. तो देखते हैं अब किसको ज्यादा फायदा मिलता है. क्रूड ऑयल स्टेबल रहेगा तो आम जनता को सीधे तौर पर फायदा है, और सोने चांदी की चमक तो सब लोग देखना चाहते हैं.
3: जी विशाल, वी आर टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस, बट आई वांट टू यू नो कनेक्टेड टू अनदर थिंग. वी हैव द आरबीआईज मंथली पॉलिसी मीटिंग कमिंग अप नेक्स्ट वीक, फ्रॉम मंडे इट विल बी देयर. सो what is your expectation from that meeting?
2: I largely believe and very strongly believe that the RBI is likely to keep it steady, keep the ship steady. No interventions as of now. I don't think the RBI would like to intervene as at this point in time. There might be some cautionary statements which might be coming in from RBI, but largely I think it's going to be the same as usual.
3: Right. And do you think one of the factors or rather, it's again speculation, but do you think the factors that may, whatever the decision the RBI ultimately takes, of course the international crude oil prices would play a role in that?
2: Yes, definitely they would play a role, and we've almost crossed the stormy waters as far as Indian context is concerned. So the

0: का बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद निखिल
2: Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise for third consecutive session. Sensex gains over 150 points. Nifty settles at around 24,400. In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

0: make me blush.
1: அவளொரு பாதி நானொரு பாதி என்பது போலே நடப்பாளே.

0: நிறைவு பெற்றது திரை கானம். மீண்டும் திரைப்பாடல்கள் 12:10 இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली गलौज से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर की हाल की घटना को उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी सभ्य समाज के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए, लेकिन बचपन में गलती होना स्वाभाविक है और उसे सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगमपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए

0: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। भारत अध्यक्ष देश के रूप में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उज्बेकिस्तान के बाकू में जारी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल मुकाबले आज से शुरू होंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात के में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरल, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen countries' energy security and unlock vast offshore

0: நேயர்களே, இதுவரை எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் அப்பு திரைப்பட பாடல்களை கேட்டு ரசித்தீர்கள். நேரம் 12:59. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने

0: वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। केरला में समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आधी रात से हटा ली गई है। मछलियों के प्रजनन समय को देखते हुए मशीनों से मछली पकड़ने पर 52 दिन का यह वार्षिक प्रतिबंध लगाया गया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatt hour. In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abusers never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at Jantar Mantar, where some mischievous children used very abusive language, words that do not befit any civilized society."

0: உயர்ந்த மனிதன் பட பாடல்களை கேட்டு ரசித்தோம். நிறைவு பெற்றது நினைவில் நின்றவை. வழங்கியது சென்னை வானொலியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1. நேரம் 1:59:55. தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह के शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

0: कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटाथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल मुकाबले आज से शुरू होंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatt hours. The Union Cabinet also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abuses never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at the Jantar Mantar where some mischievous children used very abusive language." Mr. Modi said, "It is a time to embrace these children and show them the right path."
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport.

0: பாட்டு பாடாதோ. பூத்தாச்சு கண்ணுக்கு செய்தியும் வந்தாச்சு, காவேரி போல பொங்குற மனசு பாடாதோ.
1: நேயர்கள், இதுவரை கேட்டு ரசித்த இந்த நிகழ்ச்சி 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீபிரியா கிடைக்கப் போகும் ரயில் படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. 5,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता. जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए. ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं. श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है. सप्ताह की शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था. मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना. आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है. इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की. इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की. बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

0: भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hours. The Union Cabinet also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abuses never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at Jantar Mantar, where some mischievous children used very abusive language." Mr. Modi said, "It is the time to embrace these children and show them the right path."
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill amendment. Opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram, Andhra Pradesh. Developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the Greenfield Airport has been designed to handle 6 million passengers annually. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Vivek Smarak. India said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing

0: 100.1 FM கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் பிரவீன் கோகிண்டி அவர்களின் புலாங்குழல் இசை, அதனைத் தொடர்ந்து உஸ்தாத் முகமது, தில்ஷத் கான், பேகம் பர்வின் ஆகியோரின் பாட்டு கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह की शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में

0: स्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, साक्षी, प्रिया और सचिन ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 9 मुक्केबाज अपने अपने वर्ग के फाइनल पहुंच गए हैं। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram. Developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the Greenfield Airport has been designed to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of national highway projects worth over 1,880 crore rupees. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abusers never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at the Jantar Mantar, where some mischievous children used very abusive language." Mr. Modi said, "It is a time to embrace these children and show them the right path."
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer Dilip Saikia took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. India said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK.

0: இன்னும் சில நிலைகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நவீன் சக்சேனா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीतारामन राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता. उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था. उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है. श्री मोदी ने कहा कि ऐसे युवाओं को अदालती कार्यवाही में घसीटने या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाने के बजाय समाज को उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वो इसमें शामिल बच्चों को माफ करना चाहते हैं और लोगों से सहानुभूति और समझ की इस भावना को अपनाने की अपील की. दंड के बजाय मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युवा भटक जाते हैं उन्हें समर्थन और सकारात्मक दिशा की आवश्यकता होती है ताकि वो जिम्मेदार नागरिक बन सकें. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है. सप्ताह के शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था. मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना. आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है. इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 13 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी. इस योजना के अंतर्गत 5,070 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है. साथ ही मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने और 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया योजना, साथ ही राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की. बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच कल से 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे. इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. भारत कुल 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं. जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है. एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत